मैं भी निचवा जोश भाष मेरो मोना जादी एररी मुनुक्वार ओंगशेत का सिंसर फमु एगेंस तंगा सेत के एगेंस एगेंस नेस्ता सिस्टा कुरु ताऊ रिबु एगेका सेत का एगेका सिंसर फेंस एफेंस यारान एचिरा मोना मोटु रहा मोरू आहाइविन और झुमझा यहाँ से मेरे